0: That was the trailer for Avengers Doomsday. You cannot tell me you are not waiting for it. It's a superhero based on the Marvel comic superhero team, The Avengers, produced by Marvel Studios once again and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. It's intended to be the sequel to Avengers Endgame of 2019 and the 39th film in the Marvel Cinematic Universe. It's directed by Anthony Joe Russo once again and written by Mark Waldron, Stephen Maffili, and written by Chris McKenna and Eric Sommers. The film features an ensemble cast led by Robert Downey Jr. as Dr. Doom. In the film, Avengers, Wakandans, New Avengers, Fantastic Four, X-Men, and others converge from different universes to face Doom amidst the collapse of the multiverse. We are talking about Doomsday. I hope you're excited. There's still little information about this. We can know that it's approximately 2.5 hours and it's going to come in English. Expectations are that it's released on the 18th of December. I am so excited, you guys. Oh my god, I cannot. Sorry. Well, in the meantime, there are other movies also coming. If you're a fan of Indian movie, you should know that Drishyam is coming to its conclusion with Ajay Devgan on the role. Let's have the trailer.
1: अगर आपको विजय की कहानी का sequel लिखना पड़े, तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
2: विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये या तो विजय जानता है, या अल्लाह जानता है.
3: आपने कहा उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है. किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
4: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं.
3: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए.
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए.
6: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा.
7: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है. सरकार तुझे इनाम देना चाहती है. देख तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच.
8: मैं आदमी नहीं, निशानी हूं. जिस पर टेढ़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसको खराब टाइम शुरू.
4: इस बार ये लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं. बिना किसी सॉलिड एविडेंस के वो लोग इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे.
6: इंसान जबान से तो झूठ बोल लेता है, पर दिल सब सच बता देता है.
8: क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूं? हाँ, हार्टबीट एकदम नॉर्मल. तेरे साथ ट्राई करते हैं. क्या तूने बॉडी सेवी उसे ली थी?
3: धक धक धक धक धक धक धक धक.
7: सर, हार्ट अटैक लो हो जाए.
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है. अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है.
6: One kiss, one family, one person.
8: इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीट के लेके जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे.

0: That was the trailer for Avengers Doomsday. You cannot tell me you are not waiting for it. It's a superhero based on the Marvel comic superhero team, The Avengers, produced by Marvel Studios once again and distributed by Walt Disney Studios Motion Pictures. It's intended to be the sequel to Avengers Endgame of 2019 and the 39th film in the Marvel Cinematic Universe. It's directed by Anthony Joe Russo once again and written by Mark Waldron, Stephen McFeely, and written by Chris McKenna and Eric Sommers. The film features an ensemble cast, led by Robert Downey Jr. as Dr. Doom. In the film, Avengers, Wakandans, New Avengers, Fantastic Four, X-Men, and others converge from different universes to face Doom amidst the collapse of the multiverse. We are talking about Doomsday. I hope you're excited. There's still little information about this. We can know that it's approximately 2.5 hours, and it's going to come in English. Expectations are that it's released on the 18th of December. I am so excited, you guys. Oh my god, I cannot. Sorry. Well, in the meantime, there are other movies also coming. If you're a fan of Indian movie, you should know that Drishyam is coming to its conclusion with Ajay Devgan on the role. Let's have the trailer.
1: अगर आपको विजय की कहानी का sequel लिखना पड़े, तो आपके हिसाब से इस बार क्या करेगा विजय?
2: विजय क्या करेगा, क्या नहीं करेगा? ये या तो विजय जानता है, या अल्लाह जानता है।
3: आपने कहा उनके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। किस सबूत के बारे में बात कर रहे हैं लोग?
4: वैसे भी जब आप लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो घबराने की कोई बात ही नहीं।
3: हमें अपने बेटे के लिए जस्टिस चाहिए।
5: मुझे जस्टिस नहीं, बदला चाहिए।
6: अनपढ़ है, बेवकूफ नहीं, और इसे हल्के में लेने की गलती मैं नहीं करूंगा।
7: तू गोवा का सबसे बड़ा हार्ड वर्किंग क्रिमिनल है। सरकार तुझे इनाम देना चाहती है। देख तुझे मिलने कौन आया है? एसपी क्राइम ब्रांच।
8: मैं आदमी नहीं, शनि हूं। जिस पर टिकड़ी नजर पड़ गई ना, समझो उसका खराब टाइम शुरू।
4: इस बार ये लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, बिना किसी सॉलिड एविडेंस के वो लोग इतना बड़ा कदम नहीं उठाएंगे।
6: इंसान जबान से तो झूठ बोल लेता है, पर दिल सब सच बता देता है।
8: क्या मैं एसपी क्राइम ब्रांच हूं?
6: हाँ, हार्ट बीट एकदम नॉर्मल। तेरे साथ ट्राई करते हैं। क्या तूने बॉडी सेवियो से ली थी? धक धक धक धक धक धक धक धक।
9: सर, हार्ट अटैक लो हो जाए।
3: इस बार खतरा कब, कैसे और कहां से आएगा बताना मुश्किल है। अब ये खेल दिमाग का नहीं, नसीब का बन चुका है।
6: One kiss, one family, one person. इस पूरी क्रिमिनल फैमिली को सबके सामने ऐसे घसीट के लेके जाऊंगा ना कि कोई दोबारा ऐसा करने की सोचे भी तो उसकी रूह कांप उठे।